0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस

0: के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
3: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो

0: कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
1: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
2: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें

0: के मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
0: जी,
1: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
0: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का, वो लिखते हैं।
1: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
0: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
0: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
0: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
0: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं, फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक

0: नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
1: भाग माधव भाग,
2: अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
3: चलो पकड़ते हैं माधव को,
4: पकड़ लेंगे।
5: और ये पकड़ लिया।
0: इसी भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसलकर गिर गया।
2: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
0: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
2: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
6: जी महाराज, जी महाराज।
2: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
1: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
0: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
2: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
7: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
8: जी महाराज।
7: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
2: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
7: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
2: अच्छा, तो ये प्रकरण है तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
7: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
2: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णु दत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
8: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
9: महाराज की जय, महाराज की जय।
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
10: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे। अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
11: आज मैं राजा बनूंगी।
12: आज मैं राजा बनूंगा।
1: आज तो मैं राजा बनूंगा।
2: आज तो मैं ही राजा बनूंगा। नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
11: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
8: जी, मैं रामलाल। जी मेरा

0: मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
1: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
0: जी, मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
2: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
1: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
0: महाराज की जय हो।
3: जय हो।
0: महाराज की जय हो।
3: जय हो।
4: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
5: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
6: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोद कर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
4: शिला जब खोद कर निकाली गई तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
7: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
6: चोरी?
4: राजा ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
6: ये सच है, मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
7: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
4: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
7: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
6: झूठ?
4: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
7: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
6: चोट? वो
4: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन, आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
7: ठहरू, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
4: राजा को क्रोध आ गया,
6: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है
3: तो भला मैं

0: नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
1: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
4: क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी। अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ। अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
5: अरे मशकूब भाई,
6: जी जनाब।
5: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
6: लीजिए जनाब।
5: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
6: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
5: रखो रखो।
6: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
5: गर्मी में पानी पिलाया तुमने, रखो।
6: शुक्रिया
5: शुक्रिया।
4: अमृत वाला आ गया।
7: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी, जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
8: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
5: मशकूब भाई।
6: जी जनाब।
5: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
6: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
5: लाओ। बस बस।
6: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
5: सही कहा मशकूब भाई।
6: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
5: अभी तक तो कुछ नहीं।
6: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
5: अरे नहीं नहीं
6: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
5: भाई
6: जी,
5: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
6: क्या बात करते हैं,
5: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
6: इसमें नेकी की क्या बात है?
5: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
6: ये तो मेरा फर्ज था।
5: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
6: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
5: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
6: अच्छा,
5: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
6: ये तो बड़ा नेक काम है।
5: अब ये लीजिए।
6: ये किताब, ये किताब किस लिए?
5: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
6: अच्छा,
5: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
6: जी जी जी जनाब, मैं

0: मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूंगा।
1: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए, वरना दवा का असर जाता रहेगा।
0: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस नुस्खे के लिए। मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
2: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
3: जनाब,
4: लाजवाब इंसान है वो।
3: क्या बात करता है,
4: बहुत अच्छे इंसान।
5: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
6: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है।

0: खेती करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
1: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
0: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
1: पैसा लाए हो?
2: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
1: मुंह है खाली, आप चले आते हो?
2: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
1: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
2: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
1: बच्चे को गोद में उठाओ।
2: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम
1: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
2: मर जाएगा ये।
0: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब, शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं। रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं। आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब।
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज। मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
3: At the level of the Prime Minister,
4: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
5: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस

0: इस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल SIT ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड TDB के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व TDB अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार